0: सुप्रभात दोस्तों, आज है सैटरडे और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजी अदनान, लेकर आया हूँ एक नया दिन एक नई सोच इन द शो।
1: ऑल इज वेल आरजी अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। वीकेंड की सुबह है तो थोड़ा रिलैक्स भी होता है इंसान, लेकिन पॉजिटिविटी और एनर्जी की जरूरत हमेशा रहती है। और दोस्तों, पॉजिटिविटी की बात हो और महात्मा गांधी जी याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो गांधी जी का एक सुविचार है कि किसी भी देश की आत्मा उसकी जनता की नैतिक शक्ति और आचरण में बसती है। मतलब हम अपने कर्मों और सोच से ही अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे किसी की मदद करना, सच बोलना या फिर इंसानियत दिखाना, यही असली पावर है जो सोसाइटी को मजबूत बनाती है। तो आज इस वीकेंड की सुबह चलिए एक नया इरादा कर लेते हैं कि अपने छोटे छोटे कर्मों से अपना और दूसरों का दिन बेहतर बनाए। यही गांधी जी के विचार को आगे ले जाते हैं और इसी पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं आज के सफर पर। जा होगा म्यूजिक, बात और वो वीकेंड वाली मस्ती। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे यानी कि आरजी अदनान के साथ सैटरडे की सुबह इन द शो।
1: All is well, RJ Adnan's morning show, freshness live radio ka flow
0: on MGM 90.

0: किस्सों का कारवां विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।
1: एक सवाल दिमाग में आया था, कब आखिरी बार अपने खुद को थैंक यू कहा था? अपने आप को कह रहा हूं मैं। माँ को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं, दोस्तों को बोलते हैं, ऑफिस में भी थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन जिस इंसान ने हर मुश्किल में आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, उसे कब अप्रिशिएट किया? खुद को, उस खुद को जो हर रात टूटकर भी अगली सुबह उठ जाता है, उस खुद को जिसने लोगों के तुमसे नहीं हो पाएगा कुछ चुपचाप सुन लिया और फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ा, उस खुद को जिसने आंसू छुपाकर मुस्कुराना सीखा सिर्फ इसलिए ताकि घर वालों को फिक्र ना हो। हम अक्सर अपनी गलतियों का हिसाब रखते हैं लेकिन अपनी हिम्मत का हिसाब कभी नहीं रखते। तो आज बस एक मिनट निकालिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और दिल से कहिए थैंक यू। इतना सब कुछ सहने के बाद भी हार नहीं मानी, थैंक यू हर दिन एक नई शुरुआत करने के लिए और थैंक यू मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए। याद रखिए, जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे दुनिया भी उसे महसूस नहीं करेंगी। इसलिए आज का चैलेंज सिंपल है, खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, सिर्फ एक बार दिल से थैंक यू बोलकर देखिए, शायद आपको अपने अंदर एक नया दोस्त मिल जाएगा।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: आजकल एक लाइन ना तो बहुत कॉमन हो गई है, भाई डाइट करना है, एक काम करते कल से स्टार्ट कर दे। आप भी ऐसा ही करते हो ना, जानता हूं मैं यार। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। शुगर कम बोलने के बाद भी हम सीक्रेटली बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई में पूरे हिसाब से बराबर शुगर लेते हैं, और कहते हैं कि यार डाइट करना है लेकिन कल से करूंगा। आपने ये भी सुना होगा, बस ये पिज्जा लास्ट है, ये गुलाब जामुन आखिरी है, मंडे से पक्का डाइट, यार एक तारीख से तो पक्का डाइट करूंगा, और वो दिन कभी आता ही नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि डाइट स्टार्ट करने का प्लान हम इतनी बार बनाते हैं कि लगता है प्लानिंग ही सच्ची एक्सरसाइज है। कभी बर्थडे आ गया, कभी किसी का फंक्शन आ गया, कभी दोस्त ने ट्रीट दे दिया, इस वजह से डाइट हमारा रह जाता है, और फिर हम खुद कन्विंस करते हैं लाइफ तो एक ही बार मिलती है, कहाँ खाना कम कीजिएगा। वैसे बाय द वे दोस्तों, एक बात याद रखिए, डाइट का मतलब खाना कम करना ऐसा नहीं होता, डाइट का मतलब होता है खाना बैलेंस में खाना और प्रॉपर खाना। आप सिंपल कर सकते हो एक चीज, आज एक बिस्किट कम कर लिया, आज थोड़ा ज्यादा वॉक किया, आज कोल्ड ड्रिंक स्किप कर दी, आज शुगर थोड़ी कम खा ली, आज फास्ट फूड थोड़ा अवॉइड किया, इसके जरिए ना तो आप आपका डाइट स्टार्ट कर सकते हो। एक बात याद रखिए, डाइट कल से स्टार्ट। तो एक काम कीजिए, कल का वेट मत कीजिए, आज एक छोटा सा स्टेप लीजिए, क्योंकि फिटनेस की जर्नी कल से नहीं अभी से शुरू होती है।
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजी नगर,
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.
2: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: गगन के तले।
1: Let's talk about mental health, क्योंकि mental health well तो जिंदगी all is well. You are listening MGM 90.8 FM.
2: All is well.
1: और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी. सो मैम के साथ हम कॉर्पोरेट स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं. मैम, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के लिए डेली स्ट्रेस मैनेज करने के सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स क्या है?
3: देखिए, पहली बात है जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, कि पहले हमारे मेजर तीन टास्क्स जो हैं, हमको वो प्रायोरिटाइज करके सबसे पहले हमें वो ख़त्म करना है. हमें उन तीन चीज़ों पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब मान लीजिए कि तीन चीज़ें मेरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिनमें से एक चीज़ नहीं हुई है, तो वो क्या होता है कि मेंटली एक बर्डन फील होता है हमको, और उस बर्डन की वजह से दूसरी चीज़ों में भी मन नहीं लगता, दूसरे काम भी ठीक से नहीं होते हैं. अब मान लीजिए जैसे हमारे मोबाइल में कोई एक ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला या ज़्यादा डेटा कंज्यूम करने वाला ऐप अगर बैकग्राउंड में चल रहा हो, तो हमारा मोबाइल का फंक्शन कैसे कम हो जाता है. सो सिमिलरली हमको वैसे मेजर रोज़, दिस शुड बी अ डेली एक्सरसाइज, कि ऑफिस में बैठ के पहले तीन प्रायोरिटाइज करें काम और वो पहले ख़त्म करें. फिर दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर 1.5 घंटे बाद अगर हम 5 मिनट का ब्रेक लें, कि जैसे एक ग्लास पानी पी लिया, 50 कदम हमने वॉक कर लिया ऑफिस के ऑफिस में, है ना, विदाउट मोबाइल, तो थोड़ा 5 मिनट वॉकिंग और थोड़ा पानी पीना इज़ बेटर. तो वो हमको फिर से फ्रेश बना देता है, एंड देन अगेन वी आर रेडी टू कॉन्सेंट्रेट फॉर से नेक्स्ट 90 मिनट्स. तो ये दो चीज़ें तो मैं खुद भी काफ़ी इम्प्लीमेंट करती हूँ, और मेरा तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा मैंने महसूस किया है, तो आप सब भी ट्राई कर सकते हैं.
1: सो आप अपना स्ट्रेस किस तरीके से मैनेज करते हो, तो ये टिप्स आप यूज़ कीजिएगा और फ़ायदा तो आपको होगा ही. सो याद रखिए ये टिप्स, और भी आपके मन में कुछ सवाल हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, और सुनते रहिए

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो MGM University's JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA। हियर यू गेट एक्सीलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सराखों पर आरजे अदनान तुम चा सोबत है इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम एंड आज गाने की फरमाइश आलेली आहे सौरभ इंगळे यांच्याकडून या गाण्यासाठी
2: हां चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले
0: आज चल के तुझे बेहतरीन गाने की फरमाइश की है सौरभ जी ने तो उनकी फरमाइश पूरी करते हैं और गाने की खास बात यह है कि इस गाने को गाया भी था किशोर कुमार जी ने म्यूजिक किशोर कुमार जी का ही था और लिरिक्स बिना तो किशोर कुमार जी ने ही लिखे थे चल फिर अभी गाना प्ले करते बाय द वे अगर आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर और सुनते रहिएगा

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एंड फाइव, छत्रपति संभाजीनगर।

0: हेलो हाय नमस्कार, यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM. So, क्या हालचाल, सब एकदम मस्त है ना। वैसे आप मेस पर तो खाना खाते ही होगे, एंड मेस के खाने की क्वालिटी कैसी होती है हम सभी को पता है। दाल अगर हमने लिए तो उसमें दाल कम पानी ज्यादा लगता है, और पनीर की भाजी में पनीर ही गायब होता है। छोटे छोटे टुकड़े होते पनीर के, जिसे हम पनीर समझकर खाते हैं, वो भी अब पनीर ओरिजिनल आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो पता ही नहीं भाई। इस वजह से मेरे मेस वाले ने तो पनीर बनाना ही छोड़ दिया। ये तो कुछ नहीं, अपने शहर में और हॉस्टल है जहाँ पर के मेस में क्या मिलता है बताए, कीड़े मकोड़े बाल और यहाँ तक के गोगल गाय भी मिली है। सामाजिक न्याय विभाग असा शासकीय वस्ती गृह आहे, आणि येथील विद्यार्थिनीच्या टिफिन मध्ये मेस मध्ये काय निघालं तर गोगल गाय निघाली आहे, कधी कीड निघतात, आणि इतकंच नाही त्यांच्या हॉस्टेल मध्ये साप मुंगूस हे सुद्धा निघतात। सो इस तरीके की सिचुएशन में सारी लड़कियां रह रही है। बट FDA से एक दरख्वास्त है यार, ये एक मेस की कहानी नहीं है, अपने शहर में जितने भी मेस है, टिफिन है जहां पर स्टूडेंट्स खाना खाते हैं, एक बार आप वो चेक कीजिएगा, तब जाके समझ में आएगा कि हमें भी कि हम जिस मेस में खाना खा रहे हैं भाई, वो कितना हाइजीनिक है या नहीं, वहां की क्वालिटी किस तरीके से खराब है। अगर ऐसा सीरियसली हो गया ना, और होना ही चाहिए, तो अपने शहर के आधे से ज्यादा मेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा मेस वाला सच में कितना हाइजीन मेंटेन रखता है या नहीं रखता है। तो अब FDA से दरख्वास्त है यार, ये सारे मेस है ना, जो गवर्नमेंट की मेस हो या फिर प्राइवेट मेस हो या तो फिर घरगुती ज्या मेसेस आहे, त्या सर्व त्यांनी चेक करायला पाहिजे। होप सो जल्दी से FDA ये कारवाई करे और मेस का पर्दा फाश करे। वैसे आपके मेस में ठीक ठाक खाना मिलता है, दाल कम पानी मिलती है, बताइए जरा DM के जगह इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.
4: मैंने

0: अदनान।
1: अब आप सोचेंगे भाई ये पागल तो नहीं हुआ है, क्लासरूम में बच्चे हेलमेट पहनकर क्यों बैठे। हाँ पहनना ही पड़ेगा, महानगर पालिका के स्कूल है कुछ ऐसे हो चुके हैं। देखो मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि सभी स्कूल ऐसे खराब नहीं है अपने महानगर पालिका के, कुछ कुछ स्कूल बहुत अच्छे डेवलप किए हैं, लेकिन कुछ स्कूल ना 1980-90 के जमाने में बनाए हुए है और आज तक चल रहे है, और उन स्कूल की बिल्डिंग इतनी खराब हो गई है कि कब क्या गिरेगा पता ही नहीं। तो महानगर पालिका का एक स्कूल है जिसका प्लास्टर गिरा और उस वजह से एक लड़की जख्मी हो गई है, उसके सर पे मार लग गया है। अब ये बात यहाँ पर ही नहीं रुकती है, स्कूल वालों ने ऑलरेडी प्रशासन के पास बहुत सारे एप्लीकेशन दिए थे कि यार स्कूल की बिल्डिंग अब ठीक ठाक नहीं रही है, बहुत कमजोर हो रही है, तो हमें कहीं और शिफ्ट करें। तो प्रशासन ने सोचा ठीक है ना करेंगे, तो प्रशासन के आलस से और करेंगे ना यार, तो इस चीज की वजह से ऐसा हुआ और खुदा ना खासा कुछ बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। तो सवाल वही उठता है कि महानगर पालिका मदद नवीन दालन तैयार के लिए जितना सगे नगर सेवकों चर्चा करता है, तर त्यासाठी 25 कोटी रुपयांचा खर्च लागला होता, त्यातील 3-4 कोटी जरी अशा शाळेसाठी दिले असते तर शहरातील सर्व शाळा एकदम चांगल्या झाल्या असत्या। बट क्या है ना, जब कोई एक्सीडेंट होता है तभी आंखें खुलती है, तब जाकर प्रशासन काम करना शुरू करता है। अब प्रशासन ने ये स्कूल को कहीं और शिफ्ट करने का काम शुरू किया है और कह रहे कि अब स्कूल का मेंटेनेंस करेंगे। खरच जो पर्यंत काही दुर्घटना होणार नाही तो पर्यंत डोळे उघडणार नाही, क्या ही बोले आदत हो गई है, अब चलता है चलने दो बोल के चलता ही आ रहा है। खैर स्टे ट्यून्ड
2: Only on MGM 90.8 FM.

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: नमस्कार, छत्रपति संभाजीनगर
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8।

0: भाई किसी को इतना भी परेशान मत करो शादी के लिए कि वो सीधे धरने पर बैठ जाए। कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया कि एक बंदा है जिसने एक धरना आंदोलन शुरू किया है और उसका मेन मोटिव क्या है, उसका कहना है कि कोई लड़की नहीं दे रहा है शादी के लिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया लेकिन नौकरी नहीं है और नौकरी नहीं है तो छोकरी भी नहीं दे रहा है कोई, ये उसका मेन मोटिव है, मतलब मेन मुद्दा है। और उसका कहना है कि मेरे जैसे हजारों लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, तर सर्व लग्नांसाठी आपल्या भावांनी ही मोहीम सुरू केलेली आहे आणि हा एक आंदोलन त्यांनी सुरू केलाय सोलापूर मध्ये। आणि का सुरू केलाय की घरचे नातेवाईक सगळे टोमने मारतायत की लग्न कधी करणार आहे, किती वय झालंय लग्न कर, पण नोकरीच नाही तर लग्न होतही नाही। आणि त्यांचा मुद्दा काय माहिती का, या आंदोलनाचा विवाह विशेष पॅकेज, म्हणजे हा पॅकेज काय, तर सरकारने अशा तरुणांसाठी एक पॅकेज तयार करावं ज्यात 1,00,000 रुपये लग्नासाठी, 2,00,000 रुपये घरकुलसाठी आणि 2,00,000 रुपये कर्ज त्यांना देण्यात यावं, जेणेकरून ते त्यांचं आयुष्य सुरू करतील। बट मेरा भी एक मानना है भाई, जब तक तुम नौकरी नहीं करोगे या कोई काम धंधा नहीं करोगे तो कोई तुम्हें लड़की क्यों देगा? आप देखते कि आवाज उनकी सरकार तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, या तो फिर पहले नौकरी फिर शादी, ऐसा ही करना पड़ेगा। भाई जैसे कितने लोग जो अपने शादी का इंतजार कर रहे हैं, बताइए जरा डीएम कीजिएगा आरजे अदनानी से इंस्टा पेज पर। बाकी लग्नाळूंनो, आई होप कि या आंदोलनामुळे काहीतरी भलं होईल तुमचं। स्टे ट्यून
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM.

0: Welcome back, friends. You are listening to MGM 90.8 FM. और आपने तो अलग अलग आंदोलनों के बारे में तो सुना ही होगा, किसी का पत्नी पीड़ित आंदोलन, तो किसी का बेरोजगारी वाला आंदोलन, तो कोई पानी के लिए आंदोलन करता है, ये सब चीजें हमें पता ही होगी। लेकिन आज जिस एक आंदोलन की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब एक ऐसा आंदोलन बंदे ने किया है, वो थोड़ा हटके है, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा हटके है। क्योंकि इस आंदोलन में मुद्दा सिर्फ नौकरी का नहीं है, बात सीधे शादी तक पहुंच गई है। एक बंदा है जिसने डायरेक्टली शादी के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि भाई बेरोजगारी और शादी का क्या कनेक्शन है, और ये आंदोलन एग्जैक्टली क्या है। वैसे आंदोलन का मकसद बहुत सही है यार, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि यार बहुत सा ऐसा यूथ है जिनकी शादी नहीं हो रही, 28, 29, 30, 31, 32 उनके कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन बेचारे आप सिंगल नहीं, अनमैरिड रह चुके हैं। और इस बंदे ने ना तो सरकार से एक बहुत ही यूनिक मांग की है। हालांकि ये क्या है और क्यों हो रहा है ये बताऊंगा मैं आपको, लेकिन कुछ ही देर में बने रहिए आप मेरे साथ। उसके पहले गाने एंजॉय कीजिए, लौट कर आता हूं। स्टे ट्यून्ड
1: only on MGM 90.8 FM.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

तो जिसका हमें इंतजार होता है वो होता है वीकेंड, और वो तो आ चुका है। So, क्या कुछ आपके प्लान से वीकेंड के? देखो कुछ और ना होता, फिल्म देखने के बेहतरीन से प्लान बना सकते हो। तो इस वीक अपने शहर के थिएटर्स में कौन कौन सी फिल्में हैं जो कि आपके एंटरटेनमेंट करने के लिए तैयार खड़ी है? तो फिलहाल सबसे बवाल तरीके से एक फिल्म चल रही है जिसका नाम है मिर्जापुर द मूवी। भाई साहब क्या कमाई की इस फिल्म ने, और इतने बेहतरीन इसके रिव्यू आ रहे हैं ना, तो ये आप फिल्म देख सकते हो मिर्जापुर, अगर आपने अब तक नहीं देखी है मिर्जापुर द मूवी। इसी के साथ हनुमान अंश बहुत ही बेहतरीन फिल्म चल रही है भी, और इसको रेटिंग बहुत अच्छी मिली है, 9.7 इसको रेटिंग है। ये फिल्म की भी आपके पास ऑप्शन है, और इस फिल्म की खास बात मतलब ये फिल्म बनी है बस 2 से 3 करोड़।

में और अब तक इसने कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ से ज्यादा का। तो इसे कहते हैं एक अच्छी कहानी वाली फिल्म। आणि यानंतर मराठी मध्ये तुम्ही बघू शकता जयंती 2 ही सुद्धा रिलीज झालेली आहे आणि भाटा नावाची एक फिल्म आहे ती सुद्धा रिलीज झालेली आहे। तर हे दोन ऑप्शन तुमच्याकडे आहे। अँड अब तक अगर आपने स्पायडरमॅन ब्रँड न्यू डे नाही देखा है तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास, वो भी आप देख सकते हो। सो मिर्जापूर द मूवी, हनुमान अंश, जयंती 2, भाटा आणि स्पायडरमॅन ब्रँड न्यू डे, तो इतने सारे फिल्म्स की ऑप्शन है आपके पास। सो कौन सी देखने वाले हो आप बताइए जरा, और इनमें से अगर आपने कोई देखी है और वो फिल्म आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे शेयर कर सकते हो DMKG का इंस्टा पर, RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

एक बात कहूँ, जिन लोगों ने अभी अपने छत पर कपड़े सुखाने डाले होंगे वो निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए है। तो बात कुछ ऐसी है कि पिछले 40 दिन से हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ रहा है, जिसे कहते हैं मॉनसून बारिश, सुकून भरी बारिश। तर हवामान विभागाचा असं सांगणं आहे की 12 आणि 13 सप्टेंबर म्हणजे आज आणि उद्या आपल्या पूर्ण जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडू शकतो और इसी वजह से येलो अलर्ट भी दिया हुआ है। 40 दिन से जो बारिश हमसे नाराज थी उसकी नाराजगी दूर हो गई है और बैक टू पेविलियन वो आ चुकी है। सो अब आने वाली है बरसात। आई होप कि अब बरसात अच्छी हो और जो कुछ पानी का प्रॉब्लम हो रहा था वो सब सॉर्ट आउट हो जाए एंड ये सुकून भरी और रहमत वाली बारिश अभी अपने शहर में आ जाए। वरना हम तो पिछले बारिश नहीं थी तो हम सभी लोग गर्मी से भी परेशान थे, अक्टूबर हीट के चटके हमें सितंबर हीट में मिल रहे थे। वेलकम बैक मॉनसून। तो इस वजह से कहा ना कि छत पर आज कपड़े मत सुखाइएगा, बाकी सुनते रहिएगा।

0: Kajal.
1: Wait. I think we should go that way.
0: ये तो खराब है.
1: ये मेरा lucky charm है और ये मुझे हमेशा right direction देता है. Sometimes in life, you just have to let it go. और उसी flow में सही मंजिल मिलती है.
0: मतलब तुम एक compass से अपनी जिंदगी decide करती हो.

खुशी क्या होती है पता है बचपन की, जब हम सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, नहा धोकर 7 बजे स्कूल चले जाते थे और स्कूल जाने के बाद पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी है, आज किसी वजह से आज स्कूल बंद रहेगा, तो यार वो जो खुशी होती थी ना चेहरे पर, भागते भागते वापस घर आना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की, और उसके बाद मम्मी ने जो बनाया हुआ टिफिन था ना, वही टिफिन ना कार्टून देखते देखते खाना, उसमें जो खुशी थी ना, वो खुशी आज के बच्चे ना तो एकदम मिस करेगी यार, वो खुशी वो आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज तो यार स्कूल अगर बंद है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, क्योंकि यार जो 90s के किड्स हैं ना, तो ये खुशी का मजा उन्होंने लिया है, मैंने तो लिया है, और मुझे तो इतनी खुशी होती थी, हाय हाय हाय, जैसे मैं घर पर आया ना तो एकदम चिल्लाता था कि मम्मी आज तो छुट्टी है यार। वैसे यार वो खुशी बचपन वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं आती है। तो 90s के किड्स याद आ गए ना आपको भी आपके बचपन की, आपके स्कूल की। और भी ऐसी ना तो 90s की बातें जानने के लिए, अपने 90s के दौर में जाने के लिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ संडे स्पेशल शो 90s वाला शो सुनना ना भूले, सुबह ठीक 9 से संडे के दिन। सो वहां पर बस हम 90s की बातें करते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से ना तो आपको 90s के एक दौर में लेकर जाने की। तो भूलना मत 90s वाला शो सुनने संडे सुबह 9 बजे, और फिलहाल मेरे साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

90.8 FM। किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJAdnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो तो मेरी जान, मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप झिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है।

किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आए गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड

0: Innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: क्या?
1: तू तो पंडा हीरो निकला बत्रा, मान गई
0: प्रमोशन हो गया कैप्टन बन गया हूँ।

0: www.cmu.ac.in. स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: मिलती है एक नई पहचान।
1: ये है MGM 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

भी किसी को इतना भी परेशान मत करो शादी के लिए कि वो सीधे धरने पर बैठ जाए। कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया कि एक बंदा है जिसने एक धरना आंदोलन शुरू किया है और उसका मेन मोटिव क्या है, उसका कहना है कि कोई लड़की नहीं दे रहा है शादी के लिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया लेकिन नौकरी नहीं है, और नौकरी नहीं है तो छोकरी भी नहीं दे रहा है कोई, ये उसका मेन मोटिव है, मतलब मेन मुद्दा है। और उसका कहना है कि मेरे जैसे हजारों लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, तरशा सर्व लग्नासाठी आपल्या भावांनी ही मोहीम सुरू केलेली आहे आणि हा एक आंदोलन त्यांनी सुरू केलाय सोलापूर मध्ये। आणि का सुरू केलाय की घरचे नातेवाईक सगळे टोमणे मारतात की लग्न कधी करणार आहे, किती वय झालंय लग्न कर, पण नोकरीच नाही तर लग्न होतही नाही। आणि त्यांचा मुद्दा काय माहिती का, या आंदोलनाचा विवाह विशेष पॅकेज, म्हणजे हा पॅकेज काय, तर सरकारने अशा तरुणांसाठी एक पॅकेज तयार करावं ज्यात 1,00,000 रुपये लग्नासाठी, 2,00,000 रुपये घरकुलसाठी आणि 2,00,000 रुपये कर्ज त्यांना देण्यात यावं, जेणेकरून ते त्यांचं आयुष्य सुरू करतील। बट मेरा भी एक मानना है भाई, जब तक तुम नोकरी नहीं करोगे या कोई काम धंधा नहीं करोगे तो कोई तुम्हें लड़की क्यों देगा। आप देखते कि आवाज उनकी सरकार तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, या तो फिर पहले नौकरी फिर शादी, ऐसा ही करना पड़ेगा। भाई जैसे कितने लोग हैं जो अपने शादी का इंतजार कर रहे हैं, बताइए जरा, डीएम कीजिएगा आरजे अदनानी से इंस्टा पेज पर। बाकी लग्नाळूंनो, आई होप की या आंदोलनामुळे काहीतरी भलं होईल तुमचं। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान, ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ ஆர் லிஸ்னிங் MGM 90.8 FM. और आपने तो अलग अलग आंदोलनों के बारे में तो सुना ही होगा, किसी का पत्नी पीड़ित आंदोलन, तो किसी का बेरोजगारी वाला आंदोलन, तो कोई पानी के लिए आंदोलन करता है, ये सब चीजें हमें पता ही होगी। लेकिन आज जिस एक आंदोलन की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब एक ऐसा आंदोलन बंदे ने किया है, वो थोड़ा हटके है। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा हटके, क्योंकि इस आंदोलन में मुद्दा सिर्फ नौकरी का नहीं है, बात सीधे शादी तक पहुंच गई है। एक बंदा है जिसने डायरेक्टली शादी के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि भाई बेरोजगारी और शादी का क्या कनेक्शन है, और ये आंदोलन एग्जैक्टली क्या है। वैसे आंदोलन का मकसद बहुत सही है यार, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि यार बहुत सा ऐसा यूथ है जिनकी शादी नहीं हो रही, 28, 29, 30, 31, 32 उनके कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन बेचारे आप सिंगल नहीं, अनमैरिड रह चुके हैं। और इस बंदे ने ना तो सरकार से एक बहुत ही यूनिक मांग की है। हालांकि ये क्या है और क्यों हो रहा है ये बताऊंगा मैं आपको, लेकिन कुछ ही देर में बने रहिए आप मेरे साथ, उसके पहले गाने एंजॉय कीजिए, लौट कर आता हूँ, स्टे ट्यून।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सो जिसका हमें इंतजार होता है वो होता है वीकेंड और वो तो आ चुका है। So, क्या कुछ आपके प्लान से वीकेंड के? देखो कुछ और ना होता, फिल्म देखने के बेहतरीन से प्लान बना सकते हो। तो इस वीक अपने शहर के थिएटर्स में कौन कौन सी फिल्में हैं जो कि आपके एंटरटेनमेंट करने के लिए तैयार खड़ी है? तो फिलहाल सबसे बवाल तरीके से एक फिल्म चल रही है जिसका नाम है मिर्जापुर द मूवी। भाई साहब क्या कमाई की इस फिल्म ने और इतने बेहतरीन इसके रिव्यू आ रहे हैं ना, तो ये आप फिल्म देख सकते हो मिर्जापुर, अगर आपने अब तक नहीं देखी है मिर्जापुर द मूवी। इसी के साथ हनुमान अंश बहुत ही बेहतरीन फिल्म चल रही है भी और इसको रेटिंग बहुत अच्छी मिली है, 9.7 इसको रेटिंग है। ये फिल्म की भी आपके पास ऑप्शन है और इस फिल्म की खास बात मतलब ये फिल्म बनी है बस 2 से 3 करोड़ में और अब तक इसने कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ से ज्यादा का। तो इसे कहते हैं एक अच्छी कहानी वाली फिल्म। आणि यानंतर मराठी मध्ये तुम्ही बघू शकता जयंती 2, ही सुद्धा रिलीज झालेली आहे आणि भाटा नावाची एक फिल्म आहे ती सुद्धा रिलीज झालेली आहे। तर हे दोन ऑप्शन तुमच्याकडे आहे। अँड अब तक अगर आपने स्पायडरमॅन ब्रँड न्यू डे नाही देखा है तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास, वो भी आप देख सकते हो। सो मिर्जापुर द मूवी, हनुमान अंश, जयंती 2, भाटा आणि स्पायडरमॅन ब्रँड न्यू डे, तो इतने सारे फिल्म्स की ऑप्शन है आपके पास। सो कौन सी देखने वाले हो आप बताइए जरा, और इनमें से अगर आपने कोई देखी है और वो फिल्म आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे शेयर कर सकते हो DMKG का इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। एंड स्टे ट्यून्ड
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: एक सवाल दिमाग में आया था, कब आखिरी बार अपने खुद को थैंक यू कहा था? अपने आप को कह रहा हूं मैं। माँ को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं, दोस्तों को बोलते हैं, ऑफिस में भी थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन जिस इंसान ने हर मुश्किल में आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, उसे कब अप्रिशिएट किया? खुद को, उस खुद को जो हर रात टूट कर भी अगली सुबह उठ जाता है, उस खुद को जिसने लोगों के तुमसे नहीं हो पाएगा कुछ चुपचाप सुन लिया और फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ा, उस खुद को जिसने आंसू छुपाकर मुस्कुराना सीखा सिर्फ इसलिए ताकि घर वालों को फिक्र ना हो। हम अक्सर अपनी गलतियों का हिसाब रखते हैं लेकिन अपनी हिम्मत का हिसाब कभी नहीं रखते। तो आज बस एक मिनट निकालिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और दिल से कहिए थैंक यू। इतना सब कुछ सहने के बाद भी हार नहीं मानी, थैंक यू हर दिन एक नई शुरुआत करने के लिए और थैंक यू मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए। याद रखिए, जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे दुनिया भी उसे महसूस नहीं करेगी। इसलिए आज का चैलेंज सिंपल है, खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, सिर्फ एक बार दिल से थैंक यू बोलकर देखिए, शायद आपको अपने अंदर एक नया दोस्त मिल जाएगा।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

हेलो हाय नमस्कार, यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM. So, क्या हालचाल, सब एकदम मस्त है ना? वैसे आप मेस पर तो खाना खाते ही होगे, एंड मेस के खाने की क्वालिटी कैसी होती है हम सभी को पता है। दाल अगर हमने लिए तो उसमें दाल कम पानी ज्यादा लगता है, और पनीर की भाजी में पनीर ही गायब होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते पनीर के जिसे हम पनीर समझकर खाते हैं, वो भी अब पनीर ओरिजिनल आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो पता ही नहीं भाई। इस वजह से मेरे मेस वाले ने तो पनीर बनाना ही छोड़ दिया।

0: ये तो कुछ नहीं, अपने शहर में का और हॉस्टल है जहाँ पर के मेस में क्या मिलता है बताए, कीड़े मकोड़े बाल और यहाँ तक के गोगल गाय भी मिली है। सामाजिक न्याय विभाग शासकीय वस्ती गृह है आणि येथील विद्यार्थिनींच्या टिफिन मध्ये मेस मध्ये काय निघालं तर गोगल गाय निघाली आहे, कधी कीड निघतात आणि इतकंच नाही त्यांच्या हॉस्टेल मध्ये साप मुंगूस हे सुद्धा निघताय। सो इस तरीके की सिच्युएशन में सारी लड़कियां रह रही है। बट FDA से एक दरख्वास्त है यार, ये एक मेस की कहानी नहीं है, अपने शहर में जितने भी मेस है टिफिन है जहां पर स्टूडेंट्स खाना खाते हैं एक बार आप वो चेक कीजिएगा, तब जाके समझ में आएगा कि हमें भी कि हम जिस मेस में खाना खा रहे हैं भाई वो कितना हाइजीनिक है या नहीं, वहां की क्वालिटी किस तरीके से खराब है। अगर ऐसा सीरियसली हो गया ना, और होना ही चाहिए, तो अपने शहर के आधे से ज्यादा मेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा मेस वाला सच में कितना हाइजीन मेंटेन रखता है या नहीं रखता है। तो अब FDA से दरख्वास्त तो है यार, ये सारे मेस है ना, जो गवर्नमेंट की मेस हो या फिर प्राइवेट मेस हो या तो फिर घर गुती ज्या मेसेस आहे त्या सर्व त्यांनी चेक करायला पाहिजे। होप सो जल्दी से FDA ये कारवाई करे और मेस का पर्दा फाश करे। वैसे आपके मेस में ठीक ठाक खाना मिलता है, दाल कम पानी मिलती है, बताइए जरा DM के जगह इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। एंड स्टे ट्यून्ड
1: only on MGM 90.8

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: हेल्मेट सक्ती आपल्या शहरात झाली, आता हेल्मेट सक्ती प्रत्येक शाळेत सुद्धा व्हायला पाहिजे, क्लासरूम मध्ये सुद्धा. अब आप सोचेंगे भाई ये पागल तो नहीं हुआ है, क्लासरूम में बच्चे हेलमेट पहनकर क्यों बैठे. हाँ पहनना ही पड़ेगा, महानगर पालिका के स्कूल है कुछ ऐसे हो चुके हैं. देखो मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि सभी स्कूल ऐसे खराब नहीं है अपने महानगर पालिका के, कुछ कुछ स्कूल बहुत अच्छे डेवलप किए हैं, लेकिन कुछ स्कूल ना 1980-90 के जमाने में बनाए हुए है और आज तक चल रहे है, और उन स्कूल की बिल्डिंग इतनी खराब हो गई है कि कब क्या गिरेगा पता ही नहीं. तो महानगर पालिका का एक स्कूल है जिसका प्लास्टर गिरा और उस वजह से एक लड़की जख्मी हो गई है, उसके सर पे मार लग गया है. अब ये बात यहाँ पर ही नहीं रुकती है, स्कूल वालों ने ऑलरेडी प्रशासन के पास बहुत सारे एप्लीकेशन दिए थे कि यार स्कूल की बिल्डिंग अब ठीक ठाक नहीं रही है, बहुत कमजोर हो रही है, तो हमें कहीं और शिफ्ट करें. तो प्रशासन ने सोचा ठीक है ना करेंगे, तो प्रशासन के आलस से और करेंगे ना यार, तो इस चीज की वजह से ऐसा हुआ और खुदा ना खासा कुछ बड़ी दुर्घटना नहीं हुई. तो सवाल वही उठता है कि महानगर पालिका मध्ये नवीन दालन तयार केले जिथे सगळे नगरसेवक येऊन चर्चा करता है, तर त्यासाठी 25 कोटी रुपयांचा खर्च लागला होता. त्यातील 3-4 कोटी जरी अशा शाळेसाठी दिले असते तर शहरातील सर्व शाळा एकदम चांगल्या झाल्या असत्या. बट क्या है ना, जब कोई एक्सीडेंट होता है तभी आंखें खुलती है, तब जाकर प्रशासन काम करना शुरू करता है. अब प्रशासन ने ये स्कूल को कहीं और शिफ्ट करने का काम शुरू किया है और कह रहे की अब स्कूल का मेंटेनेंस करेंगे. खरच जो पर्यंत का दुर्घटना होणार नाही तो पर्यंत डोळे उघडणार नाही. क्या ही बोले, आदत हो गई अब चलता है चलने दो बोल के चलता ही आ रहा है. खैर स्टे ट्यून्ड.
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।